जसपाल सिंह की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना सावन को आने दो। इस फिल्म से राज कमल का संगीत था, मदन भारती की लिखी रचना थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

रहेगा। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आदमी और इंसान इस फिल्म से अभी आपने सुना। रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना थी। साथियों, प्रकृति का बहुत महत्व है हम सभी के जीवन में। प्राकृतिक नज़ारों को हम निहारते हैं, नज़ारे तो सुंदर लगते ही हैं और ये हमें फायदा भी देते हैं। हरियाली देखने में कितनी अच्छी लगती है, फूल बागीचे, इसी तरह के बाद जज्बात से सजी ये रचना आइए सुनते हैं।

फिर इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना 1980 रिलीज फिल्म भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी, रघुनाथ सेठ का संगीत विनोद पांडे की लिखी रचना।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनोखी अदा फिल्म से वर्ष 1948 रिलीज ये फिल्म। नौशाद का संगीत शकील बदायूं ने की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है अनूप जलोटा की गाई ये रचना।

0: ഇപ്പോൾ സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
6: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
7: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
8: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय

0: अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश

0: समय मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है
1: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
1: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
1: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
1: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
1: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावली नोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्यपुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
2: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 77 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
5: सुना तुमने?
6: क्या?
5: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
6: हैं?
5: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
6: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
5: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
6: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
7: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करीन?
8: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सकेला। हाँ
9: चाहिए कि जिसके बारे में
5: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
10: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
11: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ

0: हो जाए। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
1: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
2: जी हुजूर,
1: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
2: जी हुजूर।
1: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
3: July 26, 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
1: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
4: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
3: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
5: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं हैं। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की।
3: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
6: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा

0: बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: भारत माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
1: कुंवर सिंह।

0: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से
1: ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
3: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
0: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
4: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह

0: नदी पर खर गया है।
1: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ 44 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता. संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं. डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की. कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे. झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी. लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन. हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट. एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा. क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे. पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल. और अब समाचार विस्तार से. संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया. लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था. चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है. इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा.
3: The bill, among various other things that it wants to do.
4: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है. यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है. इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है.
3: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स.
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है. स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया. श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है.
5: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है. साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है.
6: कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनएक्टमेंट.
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
7: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
8: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
9: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
10: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
11: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
12: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
2: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student

0: increasing electricity demand, sir, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. Sir, through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
1: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
2: Sabhapati Mahoday, National Electricity Policy 2026. इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है. को लोकेटेड स्टोरेज, अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है. अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है. वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है. उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं. धन्यवाद. स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है. और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया. डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है. डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे. और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है. इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके. मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है

0: वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वेबिलिटी ये कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रही हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था। इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है। लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना या पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे, वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है, जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है, ये ठीक

0: के पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्टल में चला गया। एप्टल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्टल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
2: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन अवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सो द प्रोजेक्ट एनविसेजेस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.85 लाख करोड़, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. Sir, my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
0: Honorable Minister. Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइंस की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो एक फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दिया जाए।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
0: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है।

0: क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है। इसलिए पावर देशभर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो हम जवाब देंगे।
1: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: not have to pay MDR charges on UPI and global crude oil prices rise.
1: बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए आज घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 43 अंक उछला, निफ्टी 24,584 दर्ज हुआ. संसद ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आश्वस्त, कहा छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई लेन देन पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we move forward, a small note for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 43 अंक बढ़कर 78,542 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक बढ़त के साथ 24,584 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की मांग में मिला जुला रुख दिखा है. एक और खरीदारी से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट भी हुई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट टुडे. द सेंसेक्स रोज 43 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,542. The Nifty added 13 points to settle at 24,584. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained over 0.6%, while the Small-Cap 100 Index dipped nearly 0.3%. Earlier, the benchmark indices opened slightly up and briefly slipped into negative territory. However, the Sensex and Nifty recovered their initial losses and traded in positive zone for most of the range-bound session. Despite a slight pullback in the final hour of trading, both indices ended marginally higher following the closing auction session.
1: नजर डालें Sensex पैक के प्रदर्शन पर, तो 30 में से 19 कंपनियों को आज फायदा हुआ है. सबसे अधिक फायदा टाइटन कंपनी के शेयरों में देखने को मिला, जिसके भाव 3.1% बढ़कर बंद हुए. बजाज फाइनेंस को 1.9% का और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही भारतीय स्टेट बैंक, जिसके शेयरों में 2.2% की कमी देखने को मिली. इटर्नल के शेयर 1.6% नुकसान में रहे. एनटीपीसी को 1.5% से अधिक का घाटा उठाना पड़ा.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, realty advanced 1.6%, consumer durables rose 1.2%, and capital goods gained almost 0.5%. In contrast, PSU banks dipped 1.3%, housing finance shed 0.6%, and mid-small private banks' quality tilt lost over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,226 companies declined, 2,225 advanced and 194 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ. 95.29 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में आज की गतिविधि पर यदि आपकी हम प्रतिक्रिया समझना चाहें तो बताएं कि क्या सब बाजार में रहा.
2: आज देखिए बाजार जो है थोड़ा फ्लैट रह रहा है. अगर आप देखें अर्निंग सीजन जो है काफी अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा. लेकिन ऑयल और जियोपॉलिटिकल जो अनिश्चितता बनी हुई है उस वजह से थोड़ा सा वो वे कर रहा है बाजार के ऊपर, तो ये इसीलिए थोड़ा फ्लैट दिख रहा है.
0: एंड विद दैट वी ऑल्सो हैव आवर फर्स्ट कॉलर दिस इवनिंग, डॉक्टर प्रफुल्लित बिश जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली. गुड इवनिंग डॉक्टर प्रफुल्लित, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
3: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. I'm a regular listener of Market Mantra, and it's immense pleasure to get the insightful knowledge. My question is regarding, I'm a new investor in terms of SIP. So I recently started the 2,500 rupees for SIPs in sectoral this thing. The one is Nifty index funds, small index, and mid cap and large cap. So is it the right strategy? Because I was reading about it. Someone said that this is not a right strategy to go, or maybe 10,000 in one SIP would have been a better choice. So what would you suggest me? What should I read so that, I'm looking at a long time duration, for example, 30 years or 35 years delay, I'm trying to invest. Yeah. Thank you, ma'am.
2: Thank you, Dr. Bisht, and a pleasure to have you on the show. And it's nice to know that you are a regular listener. See, we always advise investors to diversify, to, have a very balanced portfolio. While, like you've said, you have invested in four SIPs and you have tried to balance it out. But you also have to see there is a cost of investment involved. So, if you're putting in small amounts in four SIPs, you are also incurring costs at four different places. So that also adds to your cost of acquisition. So you have to see how you can sort of balance it and whether it is more cost effective to do it at invest in two products or invest a consolidated sum in four in one product. But that is something you'll have to figure it out. It is advisable to have a balanced portfolio, but you also have to see the costs involved.
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: हाँ, नमस्कार सभी को. शिखा मैडम से प्रश्न ये है मैम कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईटी कंपनी अभी भी अंडर प्रेशर में है, बट दिग्गज कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकते प्रोग्राम में, ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है मैम, और वो पिछले दिसंबर 2025 से लेकर के जून तक वो 46% माइनस में थी, यानी कि डाउन चल रही थी. ठीक है मैम. हेलो
2: जी. जी अमित जी, पूछिए अपना सवाल.
4: और जून के बाद उसने अपने लोअर लेवल से 20% की रिकवरी हुई है, तो क्या हमारी आईटी कंपनी पूरी तरह एआई के जो चैलेंज से उभरने के लिए तैयार हो चुकी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो भी समस्या आ रही थी, तो क्या उसके जो है समस्या खत्म हो चुकी है या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अभी भी? धन्यवाद.
2: अमित जी देखिए, टेक क्षेत्र जो है अभी उस पर ये अनिश्चितता जो एआई के वजह से हो गई थी, ये अभी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत क्लैरिटी आई है कि आगे कितना असर हो सकता है हमारी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर. लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये माहौल अब बन रहा है कि ये हो सकता है एक बहुत बड़ा बबल हो. हमारी जो कंपनियां हैं टेक क्षेत्र की, वो भी तैयारी कर रही हैं कि वो किस तरह से इस नई चुनौती को हैंडल कर सकती हैं. तो ऐसा नहीं कहेंगे कि खतरे के बादल पूरी तौर से छट गए, क्योंकि अभी एआई का पूरा असर आया नहीं है. लेकिन हो सकता है कि एआई आने से हमारी जो आईटी कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आए नई व्यवसाय के तहत.
1: यहाँ पर दीपशिखा जी थोड़ा समझना चाहेंगे श्रोताओं के नजरिए से कि अक्सर जब कोई एक नई तकनीक आती है और ऐसी तकनीक जो समझ में ना आने लायक हो, तो थोड़ा सा भय होता है, आशंका होती है. जैसे कंप्यूटर का ही जब आगमन हुआ था तो चिंताएं थी कि कंप्यूटर नौकरी खा जाएगा. इसी तरह एआई बहुत सारे कामों को निश्चित रूप से आसान बना दे रहा है, तो यह रोजगार के अवसर कहां दे रहा, कैसे इसका जो नया स्वरूप निकलेगा उसमें ये सहायक कैसे साबित होगा, आशंकाओं के बादल से निकलने के सूत्र के रूप में समझना चाहेंगे इसे.
2: मनोज जी देखिए, एआई जो है एक नया क्षेत्र आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें एआई जो है जिस तेजी से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एआई खुद ही रेलेवेंट नहीं रहेगा, इतना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है. दूसरा चीज है कि एक कॉस्ट है एआई की. अगर आप ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एआई से, तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है कंपनीज के लिए आज की तारीख में. हो सकता है वो कॉस्ट आगे चल के कम हो जाए, लेकिन ये जो मैनेज करना है, एआई का इंटरफेस

0: इनकम टैक्सेबल नहीं है। ऐसे आदमी अगर मार्केट में इंटर करता है और अपना डिमांड अकाउंट खोल के चालू करता है तो क्या? थैंक यू मैडम।
1: नितिन जी देखिए, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो तब आपको कोई ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है, लेकिन अगर आपकी आय नहीं भी है और आप बाजार में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें आपका ऐसा कोई गेन भी नहीं आया, आपका कर नहीं बन रहा है, देनदारी नहीं बन रही, तो भी आप एक निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है। लेकिन अगर आपके गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स हैं, तो उसके लिए तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा।
2: यानी जिस समय आप काम शुरू करने जा रहे हैं उस समय कोई औपचारिकता
1: नहीं है।
3: जी, एंड विद दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग। इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव रोज मार्जिनली टू 6.7% ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर from 6.6% in the previous quarter. According to Ministry of Statistics and Program Implementation, Periodic Labour Force Survey Quarterly Bulletin, unemployment rate in rural areas increased to 4.8% from 4.3% during the fourth quarter of the last fiscal year. Meanwhile, the female urban decreased to 8.7% in the current quarter from 9.1% in the last quarter. The data showed that sectoral distribution of employment continued to exhibit similar structural pattern, with the rural workforce predominantly engaged in the primary sector and the urban workforce concentrated in the tertiary sector.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान चालान जमा कराने की आवश्यकता को, यानी इसकी जो भौतिक प्रति होती है उसे जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 1 अगस्त या उसके बाद किए गए स्वैच्छिक शुल्क भुगतान के लिए निर्यातकों को प्राधिकरण बंद करने के लिए अपने आवेदन के साथ भौतिक रूप से चालान की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से प्रक्रिया में तेजी आने, अनावश्यक पत्राचार कम होने और डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में निर्णय लेने में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
3: द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 422 करोड़ रुपीज टू ओवर 1,55,000 करोड़ रुपीज इन द लास्ट डेकेड। दिस वॉज स्टेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। In a social media post, Mr. Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women, and over 42,000 startups are registered on the portal. He further said that the platform has made government markets more accessible to MSCs, startups, women entrepreneurs and others, while championing the vision of वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया।
2: यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। इसे एक उत्साहजनक खबर माना जाए कि एक दशक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है?
1: बिल्कुल मनोज जी, देखिए जेम जो है एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत सरकार खरीदी करती है, तो एक तो कागज और सारा जो पहले डिलेज होता था या पेमेंट्स में डिले होता था, अब आप ऑनलाइन जाइए, एक मार्केट प्लेस क्रिएटेड है, जिस डिपार्टमेंट को खरीदी करनी है वो वहां से खरीदी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों की तरफ ये एक कदम था और इसका अडॉप्शन जो है वो काफी बढ़ गया है, तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है। ये अगर आप देखें जो नंबर मंत्री जी ने बताया है, तो जेम जो है सरकार में काफी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है।
2: जी जी जी।
3: And just a small reminder for our listeners at this moment, in case you have any market related queries, you can reach out to us on 2331-4444 or 2331-0481 or 2371-7106, and of course please add the code 011 before any of the numbers that you're dialing. You must also remember that we do not address stock or company specific queries.
2: श्रोताओं, आज सोमवार है और आज के दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम होता है, यानी आप हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा सवाल। आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर 2331444

0: 2331-0481 या फिर 2371-7106। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से जापान में लिवाली तेज रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 2.1% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली।
1: एंड विद दैट वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर हु जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली एज़ वेल। प्रेमजीत इज ऑन कॉल विद अस। गुड इवनिंग प्रेमजीत, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन।
2: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैम। माय क्वेश्चन टू द रिस्पेक्टेड दीक्षिका मैम, इन द रिगार्ड ऑफ मैम, व्हेन आई विजिटेड ऑल दिस पोर्ट क्लोज टू एलपीजी एंड क्रूड ऑयल्स, आई हैव सीन मैम इन टेक्सास यूएस build so many LPG terminal, new terminal. So, could we expect that the trade will be impact with our country and our region as well? Thank you, ma'am.
1: मेरा ख्याल है आप क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में देखिए, काफी समय तक अभी अनिश्चितता जो है और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि जो मेन सप्लाई क्षेत्र रहा है क्रूड ऑयल का मिडल ईस्ट, वहां पर जो है बहुत अनिश्चितता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो अनिश्चितता हट नहीं रही है। तो वो अनिश्चितता जब तक रहेगी तब तक क्रूड ऑयल पर हम प्रेशर देखेंगे कुछ समय तक।
3: So since we spoke of crude oil, it's time to take a look at the next story for this evening. Global crude oil prices edged higher today as Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai said that the Strait of Hormuz will not reopen until the US continues its naval blockade against Iran. Brent crude was trading 1.4% up at $84.72 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 1.1% higher at $79.02 per barrel when reports last came in.
0: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में समाचार तैयार किए जाने तक सोने का मूल्य 0.7% की बढ़त के साथ 150,641 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी मामूली कमजोरी के साथ 2,31,373 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको दीपशिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू निहारिका,
3: मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे दीपशिखा ऑन मार्केट मंत्रा। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस फॉर आवर लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स एड्स 43 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 24,584। पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। Finance Minister Nirmala Sitharaman assures that small merchants and consumers will not have to pay MDR charges on UPI. And global crude oil prices rise. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. Take care and see you in the next one.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

बिल्कुल, ये प्यार भरी जो रात है, गीतों से भरी जो रात है, वो कहीं नहीं ढलने वाली है। बिल्कुल, आप बनी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ आप बने रहिए और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा

0: भारती के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की उपयोगिता में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने के साथ भारत में ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों को प्रवेश की सुविधा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्ण लाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों ने भाग लिया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
1: The Parliament also passed the Bankers Book Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi has informed that no decision has been taken by the government to increase ethanol blending with petrol beyond 20%. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Mr. Gopi said that any future decision regarding higher ethanol blends will be taken only after detailed scientific and technical studies and consultations with all relevant stakeholders, including automobile manufacturers and oil marketing companies, OMCs. The minister said that the ethanol blended petrol EBP program has been implemented through a phased, scientifically validated and consultative process involving NITI

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरि ने। इस खामोश रात में जब चारों ओर सुकून की चादर बिछी हो, ऐसे में अगर कोई मधुर गीत कानों तक पहुंच जाए तो फिर क्या कहने। लगता है जैसे रात और भी हसीन हो गई हो और हर धुन दिल को अपने साथ किसी खूबसूरत एहसास की दुनिया में ले जा रही हो।

जीवा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, कोई चेहरा खामोशी से दिल में उतरता रहे, कोई याद रात की तन्हाई में धीरे से दस्तक देती रहे। कुछ सपने नींद में नहीं आते, वो तो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और हर सुबह दिल फिर उसी ख्वाब को जीने की चाह करता है।

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। प्यास भी जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। हर प्यास का बुझ जाना जरूरी तो नहीं, कुछ अधूरी चाहते ही तो दिल को जिंदा रखती हैं। बस यूं ही कतरा कतरा जीते रहिए, कतरा कतरा बहते रहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 45 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

बसीरा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

भारतीय और अमरीकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। गीत सुहाने, कुछ ऐसे गीत जो कानों से होकर सीधे दिल तक पहुंचते हैं, जिनकी धुन में बीते लम्हों की खुशबू है, जिनके बोलों में मोहब्बत है, यादें हैं और जिंदगी के अनगिनत रंग हैं।

वक्त फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास होता है जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी बादलों की छांव, और अचानक दिल कह उठता है। कुछ लोग दूर होकर भी कहां दूर होते हैं, वो तो हर मौसम में, हर खुशबू में चुपके से याद आते ही रहते हैं।

आरजू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मोहब्बत से भला कब तक यूं नजरें चुराइएगा, दिल की राहों से होकर आखिर हमारे पास ही तो आइएगा। आपका ये रूठना भी कमाल है और हमारा आपको मनाना भी। इश्क में ये छोटी छोटी नोक झोंक ही तो रिश्तों में मिठास खोलती है।

पड़ोसन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आई मिलन की बेला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सोचता हूं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मगर ये दिल है कि तुम्हारी एक मुस्कान पर अपनी सारी खबर खो बैठता है। तुम्हें चाहना शायद कोई फैसला नहीं, बस एक खूबसूरत एहसास है जो चुपचाप दिल में उतरता गया और पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी हर खुशगवार सोच का हिस्सा बन गई।

लाल बत्ती फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हाय छिलमिल, ये शाम के साए हाथ से निकल ना जाएं।

0: मेरा साया फिल्म का गाना आपने सुना,
1: नैनू वाले।
0: लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

वक्त हुआ है 1:44 और ठीक 36 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

20 साल बाद फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए, इन शब्दों में जैसे किसी के जाने का दर्द भी है और उसे रोक लेने की एक मासूम सी गुजारिश भी। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास हो जाती है कि उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। मन बस यही कहता है, थोड़ी देर और ठहर जाइए, अभी तो दिल की बातें बहुत सारी बाकी हैं।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पुराने बंधनों को पीछे छोड़कर फिर से जीने का मन करता है। बीते हुए कल की उदासी को समेटकर आज में एक नई उम्मीद तलाशने का मन करता है। कुछ गीत इसी एहसास को आवाज देते हैं।

वक्त हुआ है 1:53 और 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेल्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, यहां तक कि राजधानी बोगोटा में भी लोग घरों से बाहर निकल आए।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। पहले प्यार की मुलाकातें भला कौन भूल पाता है, वो पहली नजर, वो झिझकती सी मुस्कान, दिल की बढ़ती धड़कन और घंटों की बातें, सब कुछ आज भी उतना ही ताजा लगता है। वक्त गुजर जाता है मगर पहले प्यार की यादें दिल में हमेशा एक खूबसूरत गीत की तरह बजती रहती है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें कहने के लिए बस एक नजर ही काफी होती है। नजरें जब दिल का हाल कहने लगे तो समझिए प्यार का मौसम दस्तक दे चुका है।

वक्त हुआ है 2:26 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

खेल खेल में फिल्म का गाना आपने सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पहली नजर में ही दिल को कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे ये मुलाकात आज की नहीं बरसों पुरानी हो। नजरों ने न जाने कब दिल की बात कह दी और दिल ने चुपके से एक ख्वाहिश कर ली। हमने तुमको देखा कुछ ऐसे जैसे हर जन्म में तुमसे मिलने की आरजू रही हो।

लावारिस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आकर मिले, जैसे वक्त ने फिर से वही कहानी खोल दी हो और दिल ने मुस्कुरा कर कहा हो। कुछ मुलाकातें देर से होती हैं, मगर शायद इसलिए कि उनका इंतजार और भी खूबसूरत हो।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। रात सुरमई है, आसमान पर चांदनी की हल्की सी चमक, हवाओं में एक मीठी सी खामोशी और चारों ओर फैला सुकून। ऐसी रातों में दिल भी कुछ पुरानी यादों के पन्ने खोलने लगता है। कोई भूली हुई मुलाकात, कोई अधूरी सी बात और कोई बेहद प्यारा गीत।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

सौतन की बेटी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे सावन कुमार ने लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने। वक्त बीत गया, मौसम बदल गए, जिंदगी अपनी राह पर आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार आज भी उसी तरह महफूज है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौर

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

बजकर 11 मिनट और 15 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में बहुत से हंसी पल आते हैं, पर जो बात पहले प्यार की होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। वो मासूमियत, वो पहला एहसास, वो छुप छुप कर देखना और मुस्कुराना। सच में दोस्तों, पहला प्यार किसी पुरानी डायरी में रखे उस सूखे गुलाब जैसा होता है जिसकी महक बरसों बाद भी धुंधली नहीं होती, बिल्कुल इस गीत की तरह।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर से अभी आपने गीत सुना। ये रातें ये ढलती हुई खामोशियां, ये रातें ये ढलती हुई खामोशियां, नदी की लहरों में छिपी कुछ कहानियां, पास तुम बैठो तो वक्त भी ठहर जाए, यहीं थम जाए जिंदगी की सारी रवानियां।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दिल्ली का ठग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, वक्त की फितरत है चलते जाना, दिन ढलते हैं, महीने बदलते हैं और साल गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन पर वक्त की धूल कभी नहीं जमती।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अवतार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मधुमती फिल्म से, मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।

मोहब्बत क्या है कोई पूछे तो बता देना, मोहब्बत क्या है कोई पूछे तो बता देना, एक खामोश सा एहसास जो दिल में उतर जाए, ना कोई शर्त हो ना कोई शिकवा जहां, बस एक इंसान को देखकर दिल को सुकून मिल जाए। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म वो सात दिन से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, इश्क ये लफ्ज सुनते ही दिल के किसी कोने में एक मीठा सा एहसास जाग उठता है। मोहब्बत जब किसी की जिंदगी में दस्तक देती है तो पूरी दुनिया ही एक खूबसूरत मौसम और बहार जैसी लगने लगती है। आइए इस प्यारी सी नजाकत और एहसास को कुछ अल्फाज के जरिए महसूस।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म 19 लंदन से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं, दिल ही तो है फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मधुमति से आप ये गीत सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने कहा कि कम से कम 87 लोग घायल हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के मकसद से आपातकाल की घोषणा की और कहा कि वे आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश की युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। लाल किले को वंदे मातरम की थीम पर आधारित पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया जाएगा। लगभग 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत स्वयं सेवक ज्ञानपथ पर वंदे मातरम की प्रतिकृति बनाएंगे। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित ओलंपियाड में पदक जीतने वाले 19 विद्यार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सरकार की विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए विद्यालयों के 500 विद्यार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:11 और 11 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, बारिश और फुहार का मौसम, प्यार का मौसम। सावन सिर्फ बादलों का बरसना ही नहीं, बल्कि दिल के किसी कोने में छुपी हुई पुरानी यादों का महक उठना है। और जब दिल में एहतराम और यादें हों तो संगीत कैसे दूर रह सकता है। चलिए सावन के इसी रिमझिम मिजाज को रंगीन बनाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जीवन मृत्यु से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सावन का ये महीना हमें सिखाता भी है कुछ, और ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी तपिश हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, सब्र के बाद हर तरफ हरियाली और खुशियां जरूर आती हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर बहार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राजकुमार से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के साथ कैसा बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वही सब साथ में जाएगा और हमारे बोल ही सबको याद रहेंगे, बाकी तो सब मिट्टी है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म धर्म कर्म से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं येसुदास की आवाज में। फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों, ये महीना पतंगे उड़ाने का भी है। रंग बिरंगी पतंगे बादलों में जब लहराती हैं तो दिल बाग बाग उठता है, और ये पतंगे आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाती हैं। जिस तरह से हमारा मन होता है ऊंचाइयों तक पहुंचने का, ये पतंगे भी वैसे ही पहुंच जाती हैं। और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है पतंगे उड़ाने में। तो सुनते हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शहीद से अभी आपने गीत सुना। कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, कुछ तुम्हारे हैं कुछ मेरे हैं, ये जो बिखरे से उजाले और अंधेरे हैं, चलो संग मिलकर एक दुनिया सजाते हैं जहां तेरे मेरे सपने एक रंग में ढल जाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, मोहब्बत की राहों में मुस्कुराते चलो, दिलों के फासले मिटाकर बस प्यार बांटते चलो। नफरतों के इस दौर में उल्फत का पैगाम बनो, जहां से भी गुजरो प्यार की एक सुंदर मिसाल बनो। हंसते हंसाते राहों में खुशबू बिखराते चलो।

जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी, बस प्यार बांटते चलो। छोटी सी जिंदगी है, शिकवे गिले भुलाते चलो। जहां मिले कोई उदास चेहरा, वहां एक मुस्कान सजाते चलो। प्यार बांटते चलो।

बिल्कुल दोस्तों, प्यार बांटते चलो। और ये गीत आपने सुना हम सब उस्ताद हैं फिल्म से, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। और आइए अब प्रोग्राम की अंतिम पेशकश नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

दोस्तों, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और अब अरुणिमा से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया।

0: चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड परीक्षणों ने पुष्टि की है कि E20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तेज पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एविलार्डो डेला एस्प्रियला ने बताया कि भूकंप में 87 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोकू क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी AI संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए AI सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में ही विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवाजिन के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ग्रीवाजिन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक अंतर्निर्मित डिस्प्ले और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को नियमित नैदानिक जांच के दौरान पूर्व कैंसर संबंधी असामान्यताओं की पहचान करने में सहायक करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम देशभर के 83 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें स्कूली छात्रों को वैज्ञानिकों से बातचीत करने, वैज्ञानिक शोध को जानने और स्वास्थ्य तथा नवाचार की दुनिया का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन हथकरघा शिक्षा में सहयोग, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pamar. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 with Rajya Sabha, returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस सुहानी सुबह में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, जिंदगी में हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। पर जहाँ तक होशियारी सीखने की बात है, वो सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है।

मुकेश की आवाज में फिल्म अनाड़ी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और कब कोई कहाँ पर मिल जाता है, कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। कई बार हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते और वो हो भी जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म शोर से।

दोस्तों, मुस्कुराना भी एक कला है, क्योंकि अपनी मुस्कान से ही हम दूसरों के चेहरों पर चमक ला सकते हैं। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।